स्वरूप चार पदार्थ जे कोमल उन्हां दी सौ सुन के प्रीत ते प्रेम ते रस ते चाव मिल जांदा है। ऐसे सेवक हन, ऐसे गुरु दे प्यारे हन, तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसनिया। भी नानक उन्हां नूं आप परसन आउंदा है, राह दस रहे भाई लैणा जी सिख नूं गुस्सा आ रहा है भी सृष्टि दे मालक निरंकारी जोत पैदल जा रहे हैं, एक घोड़ी ते चढ़िया होया है भी कितनी बेदबी कर रहे हैं, सिख नूं गुस्सा तो आना ही भी गुरु पैदल है तो एक घोड़े ते सवार है। सतगुरु जी ने वेख्या कि सिख नूं तां गुस्सा आ रहा, कहण तो पहले ही रोक लिया सिखा गुस्से विच ना, इस सिख नूं पुछ के दा नाम की है। गरीब नवाज गुस्सा तां बड़ा आया सी, हुण तुहाडा हुक्म जिवें आग्या करदे हो मैं नौ पुछिया, उन्हें नौ पुछया तो घोड़ी ते सवार वाले होने वाले ने कहा मेरा नाम भाई लैणा। गरीब नवाज वो तां दसदा नाम मेरा लैणा है, फिर सिखा तू क्यों गुस्से विच आए, क्यों नाराज हो रहा, उन्हें लैणा असी ओदा देना है। बस लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ते देण वाले तुर के जांदे। तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आप साहब गए। ऐसा सेवक दूसरा गुरु नानक बने। आ सेवक दी बड़ियाई साहब ने कीती है भी सेवक दा की मरातबा है। जे असी सेवक बन जाइए सानू क्या कुछ मिलदा है, नाम दी दात, नाम जपाउणा, रखिया करनी, हाजर नाजर सतगुरु जी रहिंदे हन, इतनी शोभा सेवक दी साहिब ने कीती है। आओ करिए अरदास सच्चे पातशाह के गरीब नवाज साडे ते मेहर करके सानू अपना सेवक बना। बाबा जी ने एक बार कहा सी हुण अगे वास्ते तुहाडे सेवक ते मैं भूता नहीं छड्डांगा। किसे महापुरखा ने सेवादार भेजे भी जाके तू बाबा नानसू महाराज नूं बेनती करो भी हुण मैनूं देवो माफी ते अगे नूं तुहाडे सेवक ते मैं कोई भूत नहीं छड्डांगा। बाबा जी सुन के कह लगे मेरा सेवक वो भलिया, मैं तो रात दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह के अरदासा करदा कि हे गुरु नानक साहब मैनू अपना सेवक बना लो, भी मैं तो आप नहीं सेवक बनया, मेरा सेवक मैं तो सेवक बन वास्ते आप बेनतियां करदा। ऐसे महापुरख सानू उपदेश करदे हैं, वो तो आप रब का रूप होंदे हन। असी कलजुगी जीव हाँ, भुल जाने हाँ, मान हंकार विच आ जाने, सानू समत दे रहे भी सेवक बनो, अरदासा करो, बेनतियां करो, हे गरीब नवाज सानू अपने सेवक बनाओ। आओ जो भी माई भाई सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह हजूर जुड़े हो आपां भी सेवक बनो। जे सेवक बनांगे तो तुसीं सुन लिया भी सेवक नूं क्या कुछ मिलदा है, सेवक ते किड्डियां बख्शीशां हुंदियां हन, सेवक ते सतगुरु जी कितने प्रसन्न हुंदे हन। लैणी प्रसन्नता है, जे सेवक बन के प्रसन्नता मिल जाए होर की चाहीदा है। तां बेनती करिए सच्चे पातशाह सेवक बनाओ। सेवक किवें बणीए, बाबा जी दा हुक्म है जां उन्हां दे पवित्र बचन हन, पाई पीवो पहल खंडे तार होए जन्म सहेला, अमर छको जो पंजां प्यारियां तों मिलदा।

एक हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिस दा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिस दा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिस दा हर स्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

0: Seguir malo en el Panamá.
1: ये ओह जो दे ये पूरे दे ते जाओ गाना हम तो गुरु ग्रंथ साहिब की ये वाणी
2: आप उच्चारण कर लें आपको सतनाम
1: पूरा कर।

जिस परमात्मा ने तेनू बोलन की जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा का सिमरन तू

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना के बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवा वह भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है, ए ते सारे ही रस।

अपने पल्ले नहीं पांदी पाव है जुबान जदू तो नाम जपन लग पवेगी मन करके फिर कदी अपनी जुबान तो किसे नु माड़ा नहीं बोल।

अपनी जबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु जबान

पाप भी है पुन भी है, पर तू ये दस अंत वेले मेरी सहायता करेंगी। ते मां ने कहा बेटा मैं तेनु पालिया।

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया।

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहा जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का।

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिसदा शिंगार ए भागां वाला तखत है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का मैं चालू

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तो अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वाल जा

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दख

आश्रम बना के रहन लग पे अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पे। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखा दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया। लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्नू पलंग तो थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी। पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

योग साधना विच मगन रहा सी। इस तपस्या द्वारा उदी आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उच्चता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

उसने सिर चुका दिता। अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नू देखे

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है, पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी

आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलव आ गई हो। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने महा भैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी

मकान ढा दिते, शहर नू ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नू फतेह कीता ओदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका बजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादे दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और सत साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

करुणालय है अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

जे किसे निमाणे निताणे आदमी ने उस खंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया, उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

ऐसे गरजणगे कि तुहाडे शेरां दे जरवाणियां दे ते रजवाड़ियां दे झुंडां दे झुंड इन्हां दे इकट्ठ दे अगे सीस चुकाउणगे। गिदड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा लखां लखां फौजां नाल

तलवार दे जोर नाल इन्हां दे जन्नू ला रहा, इन्हां दे मत्थे तों तिलक पूंज रहा।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

वर्ष वह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो।

नगर जय हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कहो भैया, कोट फराद हमारे हो, कोट फराद हमारे हो। अनक विधि समझाओ, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलक मत थोरी, तुम आप